0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 चो।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Swing in the golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Many Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee support community services and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ट्राई करो। स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, टिक्कियां, समोसे, भल्ले, डोसे, गर्मा गर्म जलेबियां सारा दिन अवेलेबल हुंदियां ने। टिफिन तुसीं लगवाउणा है, घर केटरिंग करवाउणी है, लाइव तुहाडे कोई फंक्शन है, कोई तुसीं हाल बुक करवाउणा है, हर एक सर्विस इन्हां नूं तुहानूं मिल सकदी है। फोन करके किसी किस्म की जानकारी तुसीं लैनी होए लै सकदे हो। 905-450-33-33-114 कैनेडी रोड का नंबर और कथूरिया साहब का नंबर है 416-791-100। इन्हां तों भी तुहानूं किसी किस्म की जानकारी तुसीं लैनी होवे तुहानूं मिल सकदी है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। उम्र विच मिलिया सुख मनुख नूं कदे समझदार नहीं बनन दिंदा,
0: बिलकुल,
1: पर घट उम्र विच मिलिया दुख उसनों उस्ताद जरूर बना दिंदा।
0: बिलकुल बिलकुल। गुरबाणी दे विच लिखिया है जी के सुख दारू दुख दारू सुख रोग पे।
1: हाँ जी,
0: दुख दारू सुख रोग पे। दुख तुहानू सुख नू बर्दाश्त करना सिखाउंदा है, सुख तुहानू अवेसले कर दिंदा, ओह तो तुहानू दुखी कर दिंदा। बिलकुल।
1: हुण उस्ताद थोड़ा कहूगा मैनूं रिवर्स कर दो।
0: हाँ बिलकुल बिलकुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो दोस्तो, तुसी भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिंदगी सानू जिहड़ी मिली है ए इको इक है, इस नू ही सानू खूबसूरत बनाउणा पैणा है। किस आदमी दी जिंदगी दे विच मुश्किलां नहीं हन, अगर असी अपनी जिंदगी दीआं मुश्किलां नू वेख के डर जावांगे ना तां ओह कायरता होएगी, ओह जिंदगी दे विच नाकामयाबी होएगी। अगर जिंदगी दे विच आउण वालीआं मुश्किलां नू हस के असी कबूल करांगे, उन्हां नू दूर करन दी कोशिश करांगे, उन्हां नू दूर करन दे रस्ते लभांगे, उन्हां नू दूर करन दे लई अपने दृढ़ निश्चय दे नाल मेहनत करांगे जिस वी तरां दी करनी चाहीदी है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ।

0: पर साझा हिस्सा।
1: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महकांदे सौगात वंडदा साझा विरसा।

0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
1: 647-706-6640।
2: ओए ट्रक कारा लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवर्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जेएन गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533 ते
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
7: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे। मॉर्गेज विकिंग गिरीश शर्मा।
8: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स।
7: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
8: कॉल 647-606-8110
7: और विजिट sharmamortgages.com।
9: कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया अते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
10: डाइनिंग टेक आउट केटरिंग लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज देंदे ने।
9: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी। सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट।
10: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 647-338-9172। कॉल करो गुरजीत रंधावा नु 647-338-9172।
11: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते
1: क्या बात है समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री दी समोसे मिलते विद चटनी क्या उद्दे खाने जी कर लग पैंदा आ सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुन दा विरासत रेडियो लो जी 3056 ते हो जी आ जाओ काफ़ी लंबे समय तो होल्ड ते सी माफ़ कर देना सो लाइना होल्ड करनिया पैंदियां आने वाले दिनों में आप अपने ही स्टूडियो में पहुँच जावांगे सारे ही अपने स्टूडियो अपने ही स्टूडियो तो उस बैठ के टीवी पर भी प्रोग्राम करया करांगे रेडियो पर भी प्रोग्राम नाल नाल करया करांगे तुहाडे वास्ते सो सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक सानू सुनिया करो साडा तुहाडा साथ सदा ही रहेगा तो असी आवाज़ बन के तुहाडे लई बैठे हाँ जो हैगा उही कवर करन दी कोशिश करांगे आने वाले दिनों में मैं भी विशा लैके आना बे फूड बैंक कि खुले चाहिए कि बंद होने चाहिए आ किन्ने क चाहिए आ जे आप फूड बैंक खोल के अपना पैसा कमा कमा के उन्होंने दे जावे ना फिर सरकार ने कख नहीं करना सेवा करनी बड़ी जरूरी होंगी आ पर सरकार खुश होंगी एक होर खुल गया सानू कुछ करने की लोड़ नहीं तो उन्होंने खाना तो मिल ही जाना सो जॉबा लेके आवो जॉब्स फूड बैंक तो बंद होने चाहिए हैं लोगों को लोड़ ना पवे उस कर जान दी पर जे अपने काम कर पैसे वधाण जिहड़े ठगियां मारदे हन कंपनियां बंद करके भज जांदे हन उन्हां ते नत्थ पाण कोई ऐसा सिस्टम लैके आन इंश्योरेंस लैके आन जे कोई कंपनी बंद हो जाए इंपलॉई दे पैसे ना मरन इधर ये प्रोग्राम होने चाहिए साडे सो कॉल्ड सिलेक्टेड लीडर जिहड़े हन उन्होंने इधर ये काम करने चाहिए हैं सो इस साडा अज दा प्रोग्राम सारे स्पोंसर वीरां भैणां दा बहुत बहुत धन्यवाद रब राजी खुशी रखे चढ़दी कला विच रखे मेरे वास्ते सारे ही अपने हैं जिहड़े माड़े हैं चंगे बनाने की कोशिश करो जिहड़े चंगे हैं उन्होंने साथ देने की कोशिश करो तो रब कित्थे मिलदा तुहाडे घर विच हैगा माँ प्यो की सेवा रब की सेवा होंदी आ करिया करो जरूर रब तुहानू मिल जांदा एक एक करनी ना भुल्यो मेरा बाद गलबात करनी हो 416-451 बाय बाय हैव अ गुड डे।

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स, कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com. Summit Realty Expert.
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ PUNJABILEHRAN। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

तेनू जी थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज अभी आया है। कहते हैं तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है, तू मेरी पहली और आखिरी वफा है, तू चाह है तुझे चाह से भी पढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान इंतहा है तू।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets Nepal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services Nepal de vich puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
5: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: वेमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा वेमला विलेज ला विलेज वेमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा

क्या बात है, क्या हाल चाल है सब दे? उम्मीद है कि तुम सब ठीक ठाक हो, एंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। वेलकम वेलकम वेलकम, हैप्पी फ्राइडे जूनियर।

0: अभी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: वेरी गुड। सो सिंपली इंडियन से एक बार गेड़ा मार के आओ। अज का साडा सारे का सारा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है गेल फार्म वालों। गेल फार्म एंड प्रोड्यूस से तुसी एक बार गेड़ा मार के आओ। तो गेल फार्म से थोनू यार हर एक किस्म की पनीरी मिल रही है। पहली गल तो डिक्सी किंग के उत्ते लोकेटेड ने 14085 डिक्सी रोड 11 to 7 डेली खोलते ने। थोनू पनीरी सारी की सारी मिल रही है। राम तोरी, लौकी, कद्दू, भिंडी, बैंगन सारी पनीरी। तो पनीरी सिर्फ 249 $2.49 तो पनीरी है। बाकी इन्हां कोल सोयल मनूअर ऑरगैनिक कॉम्पोस्ट फार्म फ्रैश देसी आंडे प्योर फार्म फ्रैश हनी यानी कि शहद ते फ्रैशली मिल कीता चक्की दा आटा होल वीट रागी बाजरा जवार फ्लावर दा। जाओ ते लोकल तुसी शॉपिंग करो एट गेल फार्म कैलडन 1085 डिक्सी रोड डिक्सी एंड किंग गेल फार्म ते तुसी जरूर गेड़ा मार के आओ ते एंजॉय करो। वधिया टॉप टॉप टॉप दी डील एट गेल फार्म।